ही जो संभ कर मदम माजो भर गए मामच गर्मी बार आया मिनट गर्मी दिखे मामम अगर दुखा दर समाज